0: Laika Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
3: We're finally going home for the wedding.
4: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
3: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
4: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
3: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
4: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
5: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
6: Classic Nagme, aapke apne Leica Gold par.

मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवे।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले। होर के ते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी।

नाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी हृदय सिद्ध।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेश, एक दूजी बो लख होवें, लख होवें लखवीस, लख लख।

जोर ना जीवन मरण नहीं जोर, जोर ना राज माल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कछ पका

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

से देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: ये है लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: We're finally going home for the wedding.
3: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
2: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
3: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
2: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
3: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
2: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
4: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.

0: है
1: लाइका गोल्ड।
2: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
0: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: विजिट ट्रेवल हब world.com।
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.

0: Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
5: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
4: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
5: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
6: Hey, Prasanna Mahalakshmi kehti hai, bolo.
5: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा. फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन. फ्लाइट्स, फोर स्टार होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956 154846.

0: Leica Gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट travelhubworld.com.
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: 0730099823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823.
4: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन.
5: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
4: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
5: अ स्पेक्टेकुलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर.
6: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
5: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. मेक एवरीडे ग्रैंड.
8: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in 3 explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
9: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee. Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
10: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Gold Breakfast with Kajol. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: सुना कि हाँ, और सुनो, एक परी थी
1: क्या?
0: एक परी थी, तोता परी। हंसी वो बड़ी थी, हंसी वो बड़ी थी, गगन देश था उसका।
1: क्या?
0: गगन देश था उसका, अजब भेष था उसका। चले रात आगे, सुनो सुनो बात आगे, सुनो सुनो सुनो तो, अरे अरे सुनो तो, हाँ।

अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है? कोई है? कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ।

0: गुड मॉर्निंग। स्वागत है संगीत प्रेमी श्रोताओं का मनोरंजन की दुनिया में। बृहस्पतिवार वर्ष 2026 के सितंबर महीने की 10 तारीख और वक्त भाई 10:05 हुआ चाहते हैं। यही वो वक्त है जब आप और हम मिला करते हैं और संगीत के सुहाने सफर पर चला करते हैं। तो तैयार हैं आप? हम भी तैयार हैं। आइए शुरुआत करें।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio.

शायरी की किताब खोलिए और पहले शेर बोलिए शर्मा जी, उसके बाद गीत सुनवाइए। और शायरी ये कहती है कि इस दर्जा मोहब्बत हम जी जान से करते हैं, हम आपसे दूरी के तस्वर से लड़ते हैं, लड़ते हैं अपने अंदर के खौफ से अकेले, हम रोज सिमटते हैं, हम रोज बिखरते हैं, एक दूसरे की खातिर रब जिनको बनाता है, एक दूसरे से आखिर क्यों वो ही बिछड़ते हैं। भाई आज वो बिछड़ने वाले गीत होंगे क्योंकि बृहस्पतिवार है। इकरार है हमें ये जो चाहे सजा दीजिए, हम आप

0: दो गीत हमने परोसे भाई बैक टू बैक संगीत के तहत। आप सुन रहे थे अभी अभी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें। एंड दैट सॉन्ग वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म हीरा पन्ना 1973 की फिल्म। इससे पहले हीरो नंबर वन फिल्म के गीत से हमने प्रोग्राम शुरू किया। और भाई ये जो सुनाई पड़ रही है आपको, मुझे डिस्टर्ब कर रही है, क्या इलाज करूं इसका। हीरा हीरा हीरा हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। अब भाई वैसे तो गंभीर गीतों का प्रोग्राम है, मैं क्या कहूँ इन शब्दावली को कि जान चली जाए लेकिन हीरा जरूर मिल जाए। फिर क्या करेगी भाई बताओ, जब जान ही नहीं होगी तो हीरा कहाँ पहनेगी। कुछ ऐसी बातें कही है इस फिल्मी दुनिया ने, फिल्म गीतकारों ने, फिल्मी संगीतकारों ने भाई, जिसके जिसको सोच सोच के बंदा जो है वो पागल हो जाए। एक डायलॉग आता है कि मुझ पर एक एहसान करना, बस मुझ पर कोई एहसान मत करना। कर लो क्या करोगे। इस तरह के बहुत सारे संवाद फिल्मों में हैं जो अपनी ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, अपनी ही बात कह के उसे इनकार करते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते हैं। है साहब, आज गंभीर गीतों का दिन है, बृहस्पतिवार वर्ष 2026 के सितंबर महीने की 10 तारीख। और आज का दिन विश्व स्तर पर एक खास दिन होता है जिसे कहते हैं वर्ल्ड प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड डे। भाई ये जो लोग जिंदगी से घबराकर, तकलीफों से, कष्टों से, मुसीबतों से घबराकर ये इतना बड़ा कदम उठाते हैं, इसे रोकने के लिए एक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। और भाई जागरूक बनाए तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हम उन्हें जीने का अंदाज सिखा सकते हैं, हमसे पूछ के क्यों नहीं मरते ये मरने वाले हैं। चिंतन में विचार करेंगे इस पर आगे बढ़ करके। और इसके अलावा वही समाचार आप सुनेंगे 10:30 के आसपास। और क्या थॉट फॉर द डे होगा 11:00 की खबरों के बाद। दोपहर बाद 1:00 तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। माय नेम इज रवि शर्मा एंड दिस इज मनोरंजन प्रोग्राम ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, पार्ट ऑफ लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: आइए बताएं आपको भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके कितने पैसे दे रहे हैं आज एक पाउंड के बदले। Well, this is the right time to send money to your family members, friends in India, because SBI UK says that today's rate is 128.4 rupees, 128 rupees aur 40 paise for £1. You can transfer via branch, online, or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages, and safe deposit lockers. Visit SBI UK. k.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
3: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: The wait is finally over.
6: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
5: Mirzapur is coming to the big screen.
7: Gaddi na to virasat se milti hai, na siyasat se.
5: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
8: Abhi Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
5: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie in cinemas now.
7: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: लंदन, आर यू रेडी? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
12: Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
13: Dubai is the place. 11.
12: Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
14: Danu Properties.
15: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
16: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escort and tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
17: SonaTours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call SonaTours now on 0208-951-0111.
18: आपका नया स्टेशन Leica Radio Ghazals बहुत जल्द आ रहा है.
19: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: कुछ दिल के जख्म देख ले और कुछ जिगर के देख, जो मुझ पे गुजरती है वो मुझ में उतर के देख. मरता है एक दिन में कोई कैसे 100 दफा, मेरी तरह तू भी इंतजार करके देख.

0: मेरा माही जाके क्यों नहीं आया, मुझे पता है क्यों नहीं आया, नहीं आएगा वो, क्यों नहीं आएगा, सुना नहीं, पॉलिटिक्स लेटेस्ट, मेयर्स इन इंग्लैंड टू बी गिवन पावर टू इंपोज टूरिस्ट टैक्स विद नो ट्रैक.
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like
0: मेरा माही जाके क्यों नहीं आया भाई, मेहमानों पर टैक्स लगाने की छूट मेयर को दी जाएगी यहाँ काउंटीज में. मेयर्स इन इंग्लैंड टू बी गिवन पावर टू इम्पोज टूरिस्ट टैक्स विद नो कैप. कैसे लगेगी आपको ये खबर भाई, पैसे बनाने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं. और भी हैं कुछ खबरें ऐसी जो यहाँ की, ब्रिटेन की बात करें तो कंपनसेशन वार्निंग फॉर पैसेंजर्स आफ्टर शॉकिंग एयर ट्रैफिक कंट्रोल फेल्योर. ये भाई पहले भी एक बार हुआ था, क्या गुजरी थी मुसाफिरों पर, और एक बार फिर से वैसा ही समा है. कोई हल अभी तक निकला नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं. इसके अलावा और क्या कुछ है आज के प्रमुख समाचारों में, आइए देखते हैं. लाइका रेडियो नेटवर्क. अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए. पाकिस्तान में 5 दिन में पेट्रोल के दाम 21 रुपए बढ़ गए. 1 लीटर की कीमत कितनी हो गई है. पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में पिछले 5 दिनों में बड़ा इजाफा हुआ है. 5 से 10 सितंबर के बीच पेट्रोल की प्राइस में प्रति लीटर 21.88 पाकिस्तानी रुपए, जबकि हाई स्पीड डीजल के दाम में 14.62 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. भाई अब वहाँ जो पेट्रोल है उसकी प्राइस 367.75 प्रति लीटर पाकिस्तानी रुपयों में हो गई है, और हाई स्पीड डीजल अब 392.67 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर में बिक रहा है. अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी T20 सीरीज और 2026 का एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में बदलाव किया गया है. तेज गेंदबाज हर्षित राणा की जगह अब यश ठाकुर को टीम में शामिल किया जा रहा है. ये नए नए नाम सुनकर हैरान मत होइए, ये अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे. दरअसल हर्षित राणा रिहैबिलिटेशन के लिए BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अभ्यास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे रिहैबिलिटेशन के लिए, और उनकी रिकवरी अच्छी तरह आगे बढ़ रही थी. हालांकि 7 सितंबर को मैच सिमुलेशन के दौरान गेंदबाजी करते समय उन्हें रेक्टस फेमोरिस नाम की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, इसलिए भाई उन्हें आराम करने की सलाह दी गई थी. भारत से आने वाली अन्य खबरों में गौरव भाटिया, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्पोक्सपर्सन. CJP नेताओं ने आपत्तिजनक पोस्ट हटाने पर सहमति जताई है. कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि बीजेपी के लीडर गौरव भाटिया के खिलाफ एक्स पर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट हटा दिए जाएंगे. जस्टिस तुषार राव गोडेला ने आज मामले की सुनवाई के दौरान अपने आदेश में दर्ज किया कि सौरभ दास और आशुतोष रांका ने भाटिया के खिलाफ किए गए जो ऑब्जेक्शनेबल, जो आपत्तिजनक पोस्ट थी, उन्हें हटाने पर सहमति जताई है. सत्य निकेतन हादसा, भाई ये सत्य निकेतन एक बिल्डिंग का नाम था दिल्ली में जो ढही, और उसके ढहने से दूसरी बिल्डिंगों को गिराने का काम शुरू हो गया क्योंकि वो भी खतरे की जद में थी. ये कार्रवाई सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने की घटना के कुछ दिन बाद तेज की गई है. इस बिल्डिंग में स्टूडेंट्स के लिए PG चलता था. इंटरनेशनल खबरों में ईरान के हाथ लगी अमेरिकी सबमरीन के रिवर्स इंजीनियरिंग का खतरा, न्यूज रिपोर्ट में दावा है. ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका की एक फौजी सबमरीन को पकड़ लिया है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि इस सबमरीन के रिवर्स इंजीनियरिंग का खतरा है. एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि ईरान इस सबमरीन को सैन्य कार्यक्रमों के लिए, इस पनडुब्बी को फौजी प्रोग्रामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है. दावा है कि ईरान 2011 में पकड़े गए अमरीकी RQ-170 ड्रोन के साथ भी ऐसा ही कर चुका है. भारत में बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से पूरी तरह फ्री करने का ऐलान किया है। मायावती ने आज कहा कि आकाश आनंद को पहले राष्ट्रीय संयोजक के पद की जिम्मेदारियों से फ्री किया गया था, अब उन्हें पार्टी से भी पूरी तरह आजाद कर दिया गया है। आकाश आनंद पार्टी में अब स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र रहे। जॉर्डन के मुआफक असलती एयरबेस पर कल बुधवार की सुबह ईरान ने मिसाइल अटैक किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में करीब 8 F-15 लड़ाकू हवाई जहाज मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुए, डैमेज हुए। सोर्सेस का कहना है कि मरम्मत के बाद इन हवाई जहाजों को दोबारा अमरीकी वायु बेड़े में शामिल कर लिया गया है। सोर्सेस में यह भी बताया गया है कि A-10 थंडरबोल्ट विमान भी मिसाइल की चपेट में आया था। इस हवाई जहाज का एक पंख पूरी तरह से तबाह हो गया था। A-10 को आमतौर पर उसके वारथांग के नाम से भी जाना जाता है। भारत से आने वाली खबरों में, वही गरबे में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक की मांग को लेकर देवेंद्र फडणवीस यानी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं फडणवीस, अब उनकी पत्नी अमृता का एक बयान आया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने गरबा और नवरात्रि के कार्यक्रमों में धर्म के आधार पर एंट्री को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कल बुधवार को कहा कि गरबा जैसे कार्यक्रमों की सुरक्षा के लिहाज से आई कार्ड जांचना ठीक नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर लोगों को जांचना उचित नहीं है। दरअसल बात यह कि भाई कुछ शिकायतें आई थी कि कुछ दूसरे धर्मों के लोग धर्म के लिए नहीं डांडिया और गरबा में किसी और प्रयोजन से शामिल होते थे। उन्होंने कहा कि गरबा इतना हाई इंटेंसिटी इवेंट रहता है कि आई कार्ड देखना एक बहुत अच्छी बात है, पर धर्म के बेसिस पर देखना ठीक नहीं है। ये मुख्यमंत्री की पत्नी का कहना है। यहाँ लंदन में रह रहे भारतीय मूल के कारोबारी विजय माल्या ने कहा है कि उनके साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है उसे देखते हुए उन्हें लगता है कि अगर वो कॉकरोच होते तो उनकी जिंदगी शायद बेहतर होती। उन्होंने मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरे साथ जितनी नाइंसाफी हुई है और अब भी हो रही है उसे देखते हुए मैं सोचता हूँ कि मुझे कॉकरोच बन जाना चाहिए, शायद कॉकरोच की दुनिया में जिंदगी बेहतर हो। गुजरात से खबर आई है, गांधीनगर के कुड़ासन इलाके में बुधवार की रात निर्माणाधीन इमारत एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लोहे का बड़ा स्लैब गिरने से कई मजदूर मलबे में दब गए हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान चलाकर अब तक 15 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रही जंग नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनाव के तुरंत बाद खत्म हो सकती है। ट्रंप ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि ईरान अब ज़्यादा वक्त तक युद्ध जारी रखने की हालत में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक तेल की कीमतों में गिरावट की उम्मीद नहीं है। फिलीपींस से खबर आई है, वहाँ फेरी में लगी भीषण आग, 5 लोगों की मौत और 87 लोग लापता बताए जा रहे हैं। देश के कोस्ट गार्ड ने इस हादसे की जानकारी दी है। यह हादसा फिलीपींस के पालावान प्रांत में कोरोन इलाके के पास समुद्र में हुआ। आग MV जून एस्टर नाम की फेरी में लगी थी। फेरी कोस्ट गार्ड के स्पोक्सपर्सन ने बताया कि फेरी में कुल 134 लोग सवार थे, इनमें से 117 यात्री और 17 क्रू मेंबर थे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: लौट आइए वापस संगीत की ओर, गीतों की ओर, लाइका रेडियो नेटवर्क पर स्वागत है संगीत प्रेमियों का।
2: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: कटी उम्र मैंने बता क्या किया, तुझे चाहने के सिवा क्या किया, क्यों पत्थर ही पत्थर मेरे वास्ते, इबादत ही की थी, गुनाह क्या किया। ये मेरी खताएं हैं, तेरा गुरूर, तेरी बात मानी सदा, क्या किया। वफा का चलन और वो भी इस दौर में, ये मैंने भी मेरे खुदा क्या किया।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, मोर फ्लेवर्स, मोर कन्वीनियंस, मोर यम, ग्रैब योर कोका बोल टुडे।
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल।
0: और लीजिए साहब, साउथ ऑल ट्रैवल का संदेश आपको याद दिला दें, बढ़िया भाई सर्विसेज हैं उनकी, खासकर दुबई के लिए। और आज वो याद दिला रहे हैं कि साउथ ऑल ट्रैवल इज नोन फॉर इट्स कंपेटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई। कॉन्टैक्ट साउथ ऑल ट्रैवल टुडे ऑन 0208-574-8410। साउथ ऑल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टिव।
3: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. This is Like a Gold.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
6: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
5: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
6: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
7: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
6: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क। London, get ready for an unforgettable night.
8: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
6: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
8: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
6: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
8: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
6: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
9: We're finally going home for the wedding.
10: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
9: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
10: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
9: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
10: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
9: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
3: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.

0: जैसे
1: सेट गो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
2: हर मौके पर काम ये आए घर घर खुशियां लाए
1: जहां जिंदगी वहां सेट गो माइक्रोवेव

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के चिंतन क्रम में। थॉट फॉर द डे, आज का विचार। भाई मनोरंजन में ये पड़ाव 11 बजे की खबरों के बाद आता है और बरसों से सुना जाता है, दूर दराज तक चिंतन। कितने ही लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हम रेगुलरली चिंतन सुनते हैं। भाई धन्यवाद आपका, शायद आप ही की बदौलत इतने बरसों से चिंतन छाया हुआ है ईयर पर। ये भी बता दें आपको कि इस सप्ताह जो आप चिंतन सुन रहे हैं, दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय द आर्य समाज लंदन, और वो इसलिए करवा रहे हैं कि एक सूचना है उनकी ओर से। आर्य समाज जो है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए आपको विश्व शांति महायज्ञ में आमंत्रित करते हैं। आइए वैदिक प्रार्थना, आध्यात्मिक चिंतन और एकता के इस विशेष पर्व में अपने परिवार और मित्रों सहित शामिल हो जाइए। कब और कहां हो रहा है नोट कीजिए, रविवार 13 सितंबर, 13 सितंबर को, इसी वीकेंड पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक यज्ञ होगा आर्य समाज लंदन में। द एड्रेस इज 69 आर्गाइल रोड, W13 0LY। बुकिंग के लिए संपर्क करना चाहे तो उनका नंबर है 02089911732। आज के चिंतन के लिए भाई हमें श्रीमती भसीन का जो है संदेश आया कि वो कहती है कि आज हमारी तरफ से सबको ये संदेश पहुंचा दें। श्रीमती कैलाश भसीन, आपकी ओर से भी चिंतन शामिल करते हैं। आज 10 सितंबर है, बहुत सारे लोगों को पता होगा आज दुनिया भर में एक विशेष दिन मनाया जा रहा है जिसे कहते हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, अंग्रेजी में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। भाई आत्महत्या, किसी व्यक्ति पर कोई गहरा संकट आता है, किसी मुसीबत में वो अपने आप को महसूस करता है तो इतना बड़ा कदम उठाता है, जबकि ऐसा करना किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। धार्मिक दृष्टि से भी, सामाजिक नजरिए से भी, आप देखिए इतना सुंदर ये शरीर बना करके परमात्मा ने दिया है जिसे हम ब्रह्मा का मंदिर मानते हैं, और इस मंदिर को तोड़ना, तबाह करना, खत्म करना बहुत बड़ा पाप हो सकता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, एक संदेश आज के दिन मिसेस भसीन की ओर से। 10 सितंबर दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है और इसका उद्देश्य आत्महत्या की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों को सहारा देना है, ये संदेश पहुंचाना है कि किसी व्यक्ति को अकेले संघर्ष नहीं करना चाहिए। भाई आप किसी अंधेरे में रास्ता भूल गए हैं, परेशान हैं, तो ऐसे में आप चलना ही छोड़ दें, नहीं, किसी का हाथ पकड़ लें, किसी से बात करें,

0: आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड।
1: चिंतन चिंतन।
0: इंश्योरेंस एजेंट ने कहा, ठीक है इंश्योरेंस तो हम आपकी कर देंगे, लेकिन इंश्योरेंस लागू होगी 1 महीने बाद। जैसे आज आप पॉलिसी खरीदते हैं तो आज से ही लागू नहीं होगी, उसके 1 महीने बाद लागू होगी। कोई जल्दी तो नहीं है ना, कोई इमरजेंसी तो नहीं है ना, आत्महत्या करना चाहते हो 1 महीने बाद तुम्हारी पॉलिसी लागू होगी अगर तुम आज खरीदते हो तो। उस व्यक्ति की समझ में नहीं आया। फिर वो एक और विद्वान से मिला, उसने कहा यही कैसा व्यापार है कि कहती है आज पॉलिसी खरीदो और 1 महीने बाद वो लागू होगी। उसने समझाया वो इसलिए कि 1 महीने तक तुम्हारा इरादा बदल जाएगा। उसने कहा लेकिन मैं तो पक्का ठान चुका हूं सुसाइड करूंगा और मेरे परिवार को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। उस विद्वान व्यक्ति ने पूछा तुम्हें क्या लगता है पैसा पाकर वो खुश हो जाएंगे, उन्हें तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी? तुम्हारी मां है? कहने लगा हां है, जिसने गर्भ में 9 महीने तुम्हें रखा, तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, इस काबिल बनाया, क्या गुजरेगी उस पर सोचा है? तुम्हारा परिवार है? हां, पत्नी है, बच्चे हैं, क्या हाल होगा उनका सोचा है? ये तुम्हारा फैसला है, उनका नहीं। और तुम कितने लोगों को मारोगे अपने साथ, उनका जीना कोई जीना नहीं रहेगा। आओ बैठो बात करो। अल साहब घंटों बातें की दोनों ने, और इस विद्वान ने जब उस व्यक्ति से पूरी तरह से समझा बुझा करके भेजा तो जाते हुए उसका इरादा था, उसने पूछा बोलो अब भी इरादा है? कहता बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने कहा है कि कितना भी गंभीर दुख हो हमेशा नहीं रहता, कोई ऐसी रात नहीं है जिसका होता नहीं सवेरा, कांटों ऊपर चलने वाले फूलों पर भी हक है तेरा, फूल भी खिलेंगे, खुशबू भी आएगी, जिंदगी महक जाएगी, बस ये थोड़ा सा समय है इसे काट लो, निकाल लो, गुजार दो। बहनों भाइयों उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन ये उस ईश्वर का मंदिर है, इसे तोड़ने तबाह करने का अधिकार आपको किसने दिया? इतना ये विश्वास रखो अच्छे दिन गुजर जाते हैं तो बुरे दिन भी नहीं रुकते हैं, वो उससे भी जल्दी गुजरते हैं। बस थोड़ा सा समय अपने आप को दीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी, रात भर का है ये मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा? उस विचार को त्याग दो जो सिर्फ आपको नहीं आपके परिवार को आपके समाज को सबको प्रभावित कर सकता है।

0: तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा संसार, तुम्हारा समाज, तुम्हारे मित्र दोस्त, कितने ही लोग साथ मरते हैं जब तुम मरते हो, उनकी खुशियां मरती हैं, उनके जज्बात। जिंदगी बहुत कीमती है। ये ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसे बर्बाद मत कीजिए। आज का चिंतन, आज का विचार, भाई आपको बता दें कि आज सुसाइड प्रिवेंशन डे है, आत्महत्या विरोधक दिवस। सुसाइड, खुदकुशी पाप है, कायरता है, इसलिए आज के दिन हम ये निश्चय करते हैं। अगर कोई व्यक्ति निराश आपके संपर्क में है, उससे बातें कीजिए, उसकी बात सुनिए, इससे भी उसका मन जो है हल्का होता है। किसी परेशान व्यक्ति को अकेला ना छोड़ें, कभी कभी किसी को ध्यान से सुन लेना बहुत बड़ी मदद होती है। तो साहब, आज का चिंतन रोज की तरह बता दें आपको कि इस सप्ताह चिंतन जो है वो आर्य समाज द्वारा प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है, और आज के चिंतन के लिए हमें सहयोग मिला श्रीमती कैलाश भसीन की ओर से, आर्य समाज से जुड़ी हैं ये। आपको फिर याद दिला दें कि विश्व में शांति और सद्भावना की स्थापना के लिए आर्य समाज लंदन एक बहुत बड़ा महायज्ञ आयोजित कर रहे हैं, विश्व शांति महायज्ञ। आपको सादर आमंत्रित करते हैं, कहते हैं कि आइए वैदिक प्रार्थना, आध्यात्मिक चिंतन और एकता के इस विशेष पर्व पर परिवार और मित्रों सहित जुड़िए। नोट कीजिए, रविवार 13 सितंबर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक यज्ञ चलेगा। एड्रेस नोट कीजिए, आर्य समाज लंदन, 69 आर्गाइल रोड, W13 0LY। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनका फोन नंबर है 02089911732। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है। याद दिला दें आपको, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम का हिस्सा बनता है।
1: चिंतन, चिंतन।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK, State Bank of India UK. याद दिला रहे हैं, आज का रेट बता रहे हैं। If you want to send money to India, this is the right time because the rate is attractive. कितना है एक पाउंड के बदले आज? 128 रुपए और 40 पैसे। Yes, one pound could get you 128.4 Indian rupees. Don't forget to exchange it in the branch, SBI की कोई भी branch, online or SBI Yono mobile app. But remember, TNC apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Laika Gold.
4: Kyunki saans bhi kabhi.
5: This part of the show is sponsored by Kyunki Saans Bhi Kabhi Bahuti. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
6: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll Protected.

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थम।
2: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Vaidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
3: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place. 11, 11.
4: Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
6: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
7: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
8: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
7: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
8: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवर अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
9: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
8: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
10: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
11: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
12: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
13: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
14: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour, from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
15: रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
16: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
15: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
16: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
15: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
17: On this week's Leica Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
18: अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे अपने बड़े की, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, जमाना हमारी इज्जत करे। और जिसने अपने गुरु की और माँ बाप की दुआ दे दी उसको आगे जाने से रोक। बड़े पंडितों उस्तादों का कहना है कि संगीत अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुँचाता है।
17: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Let's return to the biggest hits, back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
19: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
20: TravelHub.
19: At all protected.
17: Leica.
21: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
22: किसी की याद की जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने हम उसी को याद करने लगते हैं।

0: मेलोडी लता मंगेशकर और मुकेश जी की आवाजें आपने सुनी। That song was taken from the film Chandramukhi, 1960 की फिल्म। और भाई इसी बीच कुछ संदेश मेरे सामने हैं, बड़े सम्मान के साथ मैं इन्हें पढ़ता हूँ। पहला तो रीना सेंट अल्बन से आपने लिखा है कि जय श्री कृष्णा और जय साई राम, मुझे चिंतन अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच शेखर। आप कहते हैं मुझे शिकायत है आप मेरे संदेश नहीं पढ़ते। भाई पढ़ता ही नहीं हूँ, दिल में संभाल के रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच, दुखी मत होइएगा। और राजेंद्र राज साहब आपका पैगाम मिल गया। पर मेरे बहुत सारे श्रोता चिंतन के विषय में प्रतिक्रिया देते हैं। वत्सला जी क्या कहना, कहती हैं कि प्रणाम, दिल एक मंदिर है, आपने चिंतन में यही जो है प्रतिपादित किया है। स्लो में रानी जी, आज का चिंतन आपको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। निर्मला जी, सो नाइस ऑफ यू, लवली चिंतन रवि भैया, थैंक यू जी। नीलम सुनती हैं और औरों को भी सुनवाती हैं, थैंक यू वेरी मच। शोभना राय जी, आपका संदेश मिल गया सर आँखों पर। फरीदा गुलाम अली से थैंक यू, धन्यवाद। और आप भारत से कौन हैं? भारत से भाई केतकी, आर यू इन इंडिया? आप इंडियन फ़ोन नंबर इस्तेमाल कर रही हैं, पर आप जहाँ भी हैं हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये। और आप हैं बुशी में जगदीश जी, टोरंटो में उल्लास जी, और क्रोएडन में महेंद्र पटेल जी, और अपने घर में सुनीता शर्मा जी, रागिनी जी, फतेह पटेल, हंसा बोरा, पम्मी स्लाव वाले, हिना कहती है एक्सीलेंट चिंतन। ओके जी, थैंक यू जी, मान लेते हैं। मिसेस चियांग, आपका संदेश मिला है। रंजन और जैस्मीन और जैस जी, भाई आप सबके नाम एक गाना लगाऊंगा, इंतज़ार कीजिए, सुनते रहिएगा, जो गाना पसंद आएगा वो आपके लिए होगा। Like a gold। और साहब कुछ संदेश हमारे स्क्रीन पर हमारे स्टाफ की ओर से भी है, लेकिन ये संदेश तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कैच लाइव एंड एक्सक्लूसिव क्रिकेट एक्शन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान ऑन जियो हॉटस्टार। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। 3 वनडे इंटरनेशनल्स From Sunday 13th September until Thursday 17th September from 2:50 से दोपहर बाद ये मैचेस शुरू होंगे और आप देख सकेंगे। डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो हॉट स्टार ऐप नाउ। जियो हॉट स्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप। तो भाई क्रिकेट प्रेमी नेचुरली जानकर खुश होंगे, और क्रिकेट में अगर आपकी दिलचस्पी है तो आपको आज के मैच के बारे में भी बता दें। भाई आज चल रहा है टेस्ट मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच, ये तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच है, और इसमें भाई आज के खेल में अभी तक पाकिस्तान ने 133 रन बनाए, जवाब में इंग्लैंड ने 213 रन बना लिए हैं, उसके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और खेल चल रहा है, जैसे जैसे स्कोर बदलेगा हम आपको बताते रहेंगे। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान इज़ बीइंग प्लेड इन बर्मिंगम एज वेस्टन के ग्राउंड में ये मैच खेला जा रहा है। और साहब एक और बात, वो महिलाओं का जो मैच हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, उसमें दिलचस्प चीज़ देखा कि शेफाली वर्मा को जब पाकिस्तानी कैप्टन जो थी उन्होंने आउट किया, फातिमा सना ने, तो उन्होंने एक ऐसा इशारा किया जो महंगा पड़ गया, 10% उनकी फीस काट ली गई, क्योंकि उन्होंने शेफाली वर्मा जो चौके छक्के लगाने वाली लड़की है भाई, और मुझे इसलिए भी गर्व है क्योंकि वो मेरे शहर की है, लेकिन साहब जब वो आउट हुई तो वो तो बिना प्रतिक्रिया दिए निकल गई, ग्राउंड से आउट हो गई, ठीक है एम्पायर ने दे दिया, लेकिन उसको बाहर का रास्ता जैसे दिखा रही हो इस तरह से सना ने इशारा किया, और भाई उसे ये उल्लंघना मान लिया गया, खिलाफ वर्जी मान ली गई क्रिकेट के नियमों की, और उसकी 10% फीस काट ली। लोग कहते हैं जी इंडियन खिलाड़ी ऐसा करते तो कुछ नहीं होता, पाकिस्तानी खिलाड़ी पर जुर्माना लगा दिया, भाई देख लो कितना वो अपमानजनक था या कैसा था, पर वो इशारा था ऐसा जिसका हाथ से दिखाना रास्ता कि निकल लो ग्राउंड से बाहर। राइट, क्रिकेट की बातें होती रहेंगी, लेट्स सी व्हाट इज हियर। और भी संदेश हैं कुछ, चिंतन के बारे में तो हमने बता दिया कि आर्य समाज से प्रायोजित है। हाँ एक संदेश ये भी है कि लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड टीम अप फॉर ए स्पेशल प्रमोशनल इवेंट फॉर सिधायु एट क्वालिटी फूड्स हेज एंड हाउंसलो जॉइन रूबी रजा काजल एंड सैंडी शाह दिस सैटरडे 12th September एंड एंजॉय अ फ्री हेयर मसाज या हेयर मसाज सेशन जो है वो मुफ्त उपलब्ध रहेगा विद सिधायु हेयर ऑयल एंड सिधायु शैम्पू एक्सप्लोर सिधायु टूथपेस्ट एंड एक्सपीरियंस द नेचुरल गुडनेस ऑफ सिधायु आयुर्वेदा सिधायु फ्रॉम द हाउस ऑफ बैद्यनाथ with over 100 years of trusted Ayurvedic legacy. Come, yani wo kare, come, ya studio mein aana, come at Quality Foods and join them. All the best.
1: Ye hai Like a Gold. Like a Gold. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: नहीं मानेगी भाई, नहीं मानेगी जितना मर्जी जोर लगा लो। एक आदमी दुखी होकर के एक महात्मा के पास गया, कहता है बाबा जी मेरी बीवी मेरा कहना नहीं मानती। बोला नहीं मानती, हाँ तो यहाँ क्या कर रहा है, आप कुछ करो ना, कोई मंत्र बताओ। अब बाबा जी चटाई पर बैठे थे और उनके साथ सात और साधु चटाई पर बैठे लाइन में। तो कहते हैं भाई फिर क्या करें, बोलो जी कुछ भी करो। कहते हैं वो चेले को आवाज़ देते हैं, चेला राम भाई ये आए हैं पत्नी से दुखी, इनकी पत्नी इनका कहना नहीं मानती, ऐसा करो एक चटाई और बिछा दो। अशोक कपूर जी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं अशोक जी, आप जल्दी सेहतमंद हो, तबीयत ठीक नहीं चल रही आपकी, ईश्वर जल्दी स्वस्थ करे आपको और धूमधाम से जन्मदिन मनाएं। नहीं मानेगी, बिल्कुल नहीं मानेगी।
1: Good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Like a extra podcast update.
0: और भाई लाइका एक्स्ट्रा पर नया एपिसोड हमारा इंतज़ार कर रहा है आपका, ज़रूर देखिएगा पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 32 और इसका टाइटल है मोहम्मद वकील स्पेशल। भाई ये एक बहुत सुरीले गायक कलाकार हैं जिन्हें मैंने इंटरव्यू किया पॉडकास्ट में, तो आप देखेंगे तो संगीत के प्रति आपकी जानकारी खूब बढ़ेगी। वकील और रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज एक्सपीरियंसिस एंड मेमोरेबल मोमेंट्स विद द लेजेंडरी जगजीत सिंह एंड जावेद अख्तर जैसे कलाकारों के साथ, उनकी मुलाकात, उनकी बातचीत, उनका अनुभव भाई शेयर किया है। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर, गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
3: Need anything from Tesco? How about winning the best night in ever with one of 50 tech bundles worth £10,000? Spend £25 in-store or online with your club card to qualify. Tesco. Every little helps. UK and Isle of Man 18 plus only, club card required. Spend £25 on qualifying purchases in-store or online. Max one entry per day. T's and C's restrictions and exclusions apply.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays.
4: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833
0: और विजिट travelhubworld.com.
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड,
5: विजिट travelhubworld.com.

0: जाना कहाँ है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बैक टू बैक दो गीत हमने आपको सुनवा दिए और वैसे बीच कुछ और संदेश आपने स्क्रीन पर चिपका दिए। अब देखिए ये स्वीडन वाली सपना भाई, जय श्री कृष्णा और गुड मॉर्निंग के संदेश के साथ आपने ये क्या भिजवा दिया, गर्मा गर्म पूड़ियाँ और अचार और ट्रे में रख करके और आपने स्क्रीन पर भेज दिए, स्क्रीन पर तस्वीर भेजिए, मैं भी आपके साथ ऐसा करूं तो सपना कैसा लगेगा है? आपको गाने की फोटो खींच के भेज दूं तो क्या होगा? आपकी डेडिकेशन ऐसे दिल मत जलाया करो। चलिए साहब, थैंक यू वेरी मच। और भारत गंगा राम जी आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो फोटो भेजते हैं ना, सचमुच तस्वीर भेज करके खलबली मचा देते हैं, एक वो भाई लहर सी उठती है। हमारे वो अमीन सैनी साहब बोला करते थे, भाई आपके गीतों को आपकी बातों को सुन करके वो एक खलबली सी उठती है, एक लहर सी छा जाती है। कुछ नहीं होता साहब, ये चाय पानी दिखाने के लिए है, पीने या खाने के लिए नहीं है। स्वर्गीय मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें आपने सुनी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK.

0: राशन पर भाषण बहुत होता है लेकिन भाषण पर राशन कहीं नहीं मिलता। भाई प्राण साहब के संवाद भी फिल्म उपकार में गजब थे और ये संगीत कल्याण जी आनंद जी का, उस पर आवाज मन्ना डे साहब की। मन्ना डे ही इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक, तो बहुत सारे गीत आपको सुनने को मिलेंगे उनकी आवाज में, लेकिन ये एहसास तो होगा कि कितने सुरीले गायक कलाकार थे मन्ना डे साहब। और क्योंकि स्वर ईश्वर है, उनकी आवाज़ अमर है, तो भाई इस सप्ताह में वो आर्टिस्ट ऑफ द वीक के रूप में गूंजते रहेंगे लाइका गोल्ड रेडियो पर।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट डेरीवैली.net।

0: मोहब्बत।
1: ये जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। भाई हम तो कुछ कहेंगे, हम तो पहले तो ये कहेंगे कि भाई हमारे जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें लाइका रेडियो नेटवर्क जो है वो पार्टनर है, तो भाई उनमें से एक ये भी याद दिला दें आपको कि जैस एंटरटेनमेंट ब्रिंग्स यू द बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन लंदन विद संजय कपूर और आफ्ताब शिवदासानी, सिंगर्स अमन त्रिखा एंड मयूरी और साहब मयूरी पटालिया। हाँ, संडे 27 सितंबर को आ रहे हैं लेस्टर में दी मॉन्टफोर्ट हॉल में, और एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर इज लाइका रेडियो। इसके अलावा

0: कहेंगे भाई, ये भी तो बताना है ना कि द 20th सीजन ऑफ बिग बॉस इज बैक, होस्टेड बाय सलमान खान. द शो एयर्स एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर टीवी एंड जियो हॉटस्टार. तो फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार इज स्ट्रीमिंग एवरी एपिसोड अलॉन्ग विद अ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20th हाउस.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Like a Gold.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: प्यार करने वालों को एक डर हमेशा सताता है और वो डर है वियोग का, बिछोड़े का. कहीं छोड़ तो ना दोगे, दिल तोड़ तो ना दोगे.

0: लता मंगेशकर और मुकेश जी। और भाई ये तर्ज बनाई हुई कल्याण जी आनंद जी की लगती है, लेकिन भी कोई भी हो सकता है, ये लिखा नहीं होता। पर कल्याण जी आनंद जी क्या कहने, उनकी बनाई धुनों पर मुकेश जी का स्वर जब सजता है तो गीत बरसों तक बजता है।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel वालों का संदेश, they are known for it, their competitive holiday deals to Dubai. और भाई दुबई जाने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, कहते हैं कॉन्टैक्ट साउथहॉल ट्रैवल टुडे ऑन 0208-574-8410। साउथहॉल ट्रैवल, एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: हॉलिडे ब्रेक्स वर ब्रॉट टू यू बाय साउथहॉल ट्रैवल, लो प्राइसेस फॉर फ्लाइट्स, होटल्स और हॉलिडे पैकेजेस। विजिट southalltravel.co.uk. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: Something's calling at Tesco Mobile, a £50 Tesco gift card. Get yours with our unlimited data sim for just £20 a month for 24 months with club card prices, saving you £120. Don't leave your gift card on hold. Pick up yours today. It pays to be connected. Search Tesco Mobile. Every little helps. Ends 1st of November. Save £5 per month. Club card, 4G phone and 24-month contract required. Terms at tescomobile.com/terms.
3: Like a gold.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
6: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
5: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
6: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 0192-322-7274। बुक योर टेबल टुडे।
7: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
8: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
7: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKER on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
8: Exclusive media partners LIKER Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
9: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour, from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
10: The Cycle of Love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true-life adventure.
11: I left behind everything I knew.
10: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
11: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
10: The Cycle of Love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
12: Have you noticed the way fans shout at football matches?
13: Oh, wake up!
12: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
2: gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: और भाई रेट मैं बता देता हूँ उनके, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 129.18 रुपीस, पाकिस्तानी 375.43, अफगानी 88.87, बांग्लादेशी टके 167.08 और श्रीलंकन रुपए 444.56.
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Gold. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
3: और साहब बता दूं आपको, द गोल्ड इज ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 104.27 पाउंड्स पर ग्राम.
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
5: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
6: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
5: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
6: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
7: Hey, Prasanna Mahalakshmi kehti hai, bolo prem ki bhasha.
6: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.

0: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।
1: एंड दैट्स मी। और याद दिला दो बहनों भाइयों, मेरे बाद आ रहे हैं बाली ब्रह्म भट्ट, अगला शो वो चलाएंगे और आपका दिल बहलाएंगे बहुत सारी बॉलीवुड जानकारी के साथ।

0: The Ravi Sharma Show on Leica Gold.
1: और भैरव भाई रवि शर्मा शो के अब समापन का समय हो गया है क्योंकि बाली भाई के आने का वक्त हो गया है। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, सलमा आगा और नहीं महेंद्र कपूर थे, मोहम्मद रफ़ी नहीं थे भाई, महेंद्र कपूर, सलमा आगा और आशा भोसले की आवाज़ें थी और धुन बनाई थी रवि साहब ने निकाह फिल्म की कव्वाली सुनवाते हुए। हम प्रोग्राम को अब समेटते हैं आखिरी गीत आप सबके नाम करते हुए और भाई ये शायरी भी कि मेरी जिंदगी तेरे साथ थी, मेरी जिंदगी तेरे साथ है, मेरी रूह में तेरा नूर है, मेरे होठों पर तेरी बात है, ना जुदा है तू मुझसे ना अलग हूँ मैं तुझसे, मेरी जात भी तेरी जात है, मेरी बात भी तेरी बात। इजाजत दीजिए, हैव अ सुपर्ब डे। कल 10 बजे की खबरों के बाद फिर होती है मुलाकात। Bye-bye.

0: वाह वाह वाह वाह, सोचो 68 इयर्स का डिफरेंस फर्स्ट सॉन्ग एंड सेकंड सॉन्ग में, और दोनों में हारमोनियम बज रहा था। यस, ये स्टंटमैन फिल्म जो थी उसके अंदर देयर वाज जैकी श्रॉफ एंड ही एक्चुअली इट वाज पिक्चराइज्ड ऑन हिम, बट देन देयर वाज अ कपल that were playing the man was playing a harmonium and the girl was dancing and it was a street ka jo ek hota hai kya bolte you can say street party street music jahan pe harmonium baja raha hai koi aur log paisa phenkte hain aur vagera to wo ladka ladki ka ek gana chal raha hai and jo baja baja raha hai wo gana ga raha hai and it is then picturized on Jackie Shroff who was watching and the story continues like that. Par wo tha harmonium wala gana and dusra gana that was Nadeem Shravan's music. Aur kya innovative idea inhone mara ke Jackie Shroff will not be singing that particular song but the storyline goes along by picturization on him. Stuntman and Sameer ji ne likha. And CID, 1956, 68 years before, O.P. Nayyar ji ne, unka to jo beginning of harmonium, kya bajta hai? Honestly, it's amazing. And uske baad jo ek catchy hook piece hota hai. So by the end of the song, sab gun-guna rahe hain wo music piece. And leke pehla pehla pehra, aaj bhi kitna famous hai wo gana. And Asha Bhosle ji, Shamshad Begum, Muhammad Rafi sahab. Matlab kya gana acha nikla. And that was from film CID, 1956 ka gana. And Jaan Nisar Akhtar ne ye gana likha tha. तो मैं थोड़े हारमोनियम वाले मूड में था तो जब रियाज वियाज करते तो नेचुरली हारमोनियम का वो घुस जाता ना एक कीड़ा तो वही दिमाग में चल रहा था एंड आई स्पेशली वांट टू थैंक फॉर यस्टरडे एंड सरिता सबरवाल जी ने इतनी बाखूबी से सारे ट्रिब्यूट्स निभाए एंड महबूब खान मेरा फेवरेट प्रेजेंटेशन होता है एंड शी डिड इट सो ब्यूटिफुली थैंक यू सरिता जी फॉर सिटिंग ऑन माई हॉट सीट एंड मेकिंग इट हॉटर तो अभी मैं खड़े खड़े शो कर रहा हूँ क्योंकि सीट बड़ी गर्म है एंड बाद में ऑफकोर्स फिर उसके बाद रवि भी आए रवि जी तो सरिता सबरवाल उसके बाद रवि जी तो ये सब तो मामला गर्म ही होता है ना एंड देन अनिसा नासर जी लास्ट इवनिंग एंड देन उसके पहले वो सैंडी शाह मतलब गर्म ही गर्म ये सीट गर्म ही गर्म रही और उसके पहले सबसे पहले सुबह सुबह काजल ने गर्म कर दी सीट सो ये सीट इतनी गर्म हो चुकी है तो मैं खड़े खड़े शो कर रहा हूँ अब ठंडी होगी ये 3 घंटे में फिर उसके बाद मैं बैठूँगा एंड अगला गाना जो होगा अखियों के झरोखों से वाह वाह वाह शैलेंद्र सिंह और हेमलता जी का गाना एंड सेकंड आवर में क्या होने वाला है सेकंड आवर में कुछ बातें अधूरी रह गई थी आशा जी की सो आशा भोसले जी के राग आधारित कुछ गीत मैं पेश करूंगा और आपका मन बहल जाएगा ऑनेस्टली यू गो इनटू अ लिटिल बिट ऑफ नॉस्टैल्जिया इन द सेकंड हाफ सो सुनते रहिएगा मैं हूँ बाली ब्रह्मट विद गोल्ड आफ्टरनून 1035 मीडियम वेव DAB एलेक्सा गूगल होम एंड लाइका gold.com ऑल्सो अवेलेबल ऑन रेडियो प्लेयर ऐप एंड इट इज द 429th डे ऑफ लाइका रेडियो मिडलैंड्स विच स्टार्टेड ऑन 1st of July 2025 एंड 4 बजे आएंगे सैंडी शाह एंड ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स राज पतंजी फ्रॉम 4 PM ऑनवर्ड्स एंड इट इज द 360th डे ऑफ द 4th ईयर ऑफ लाइका गोल्ड That was Dil Se Radio that was rebranded into Laika Gold. And 3 din ke baad, 5 saal ho jayenge. Wow! Meri bhi birthday hogi. Maine bhi usi din shuru kiya tha. 13th September 2022.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in sterling can get you up to 128.85 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNCs apply. 128.85 Indian rupees to a British sterling pound.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
5: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
6: Weddings, celebrations, corporate events, Ragasan sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak, world class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka phone milaye 0208839 0880 or visit ragasan.com. Location, design, management, ya catering. Ragasan.
7: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11, 11.
8: Call the Danu Properties London office today on 02 03 963.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Laika Gold.
3: क्या गाने थे मतलब एक गाना तो आपने अभी सुना हेमलता जी का एंड व्हाट अ सॉन्ग एंड उसके पहले जो आपने सुना था एंड दैट वाज मेरा हारमोनियम वाला मूड था आज इसलिए मैंने शुरुआत कर दी थी कुमार सानू जी का स्टंटमैन का गाना फिर सीआईडी का वो भी हारमोनियम बेस्ड एंड कई दिन से मुझे शैलेंद्र सिंह और हेमलता जी अखियों के झरोखों से 1978 बट देन I have to tell you something special and I was watching Sandy Shah actually talking about it on the Instagram and that was beautifully said. He said he didn't need any hair massage but then there is a way of getting it. Laika Radio and Laika Gold team up for a special promotional event for Siddhayu at Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join Ruby Raza, Kajal, Sandy Shah this Saturday, 12th of September and enjoy a free hair massage session with Siddhayu Hair Oil and Siddhayu Shampoo. Explore Siddhayu Toothpaste and experience the natural goodness of Siddhayu Ayurved Siddhayu from the house of Vaidyanath. With over 100 years of trusted Ayurvedic legacy, come and join us.
0: Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Laika Gold. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
4: September means serious savings on blinds, curtains and shutters in the Hillary Super Sale. And right now, the savings are even bigger, with an extra 15% off absolutely everything until the 29th of September. That's on top of up to 40% off hundreds of made-to-measure styles. Plus, this autumn, get a free blackout thermal lining on our favourite Roman blinds and curtains. And don't forget, with Hillary's, measuring and fitting is always included. So get window wise and book your free in-home appointment today at hillarys.co.uk. Conditions apply.
5: Good afternoons with Bali Brahmbhat. Bali Brahmbhat is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com
7: TravelHub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड
7: विजिट TravelHubWorld.com
8: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
9: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
8: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali story, the journey of Ram and Sita.
9: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
10: है प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
9: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
11: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 hour line.
12: Two businesses.
13: Same town.
12: Same service.
13: One appears on page one of Google.
12: The other doesn't.
13: Guess which one gets the customer?
12: The truth is brutal.
13: The first page of Google gets the business.
12: Everyone else gets what's left.
13: So here's the real question.
12: When your customers search for what you sell, do they find you?
13: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
12: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
14: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 kilograms जस्ट 8.96 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
15: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
16: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
15: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
16: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
15: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
16: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
17: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in 3 explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
18: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com कॉल 02087677627
19: Like a Radio Network proud hospitality partner Ragasan
20: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

एंड ये गाने सुनकर आपका मन बहल जाए तो मुझे बता दीजिएगा ऑन 07424232323, जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। मैं हूं बाली ब्रम्बर आपकी खिदमत में ऑन लाइका गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स दैट स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन। अब दिवाली की सीजन आ रही है, नवरात्रि की सीजन भी आ रही है और पायुषण, तो इस सीजन में जैमिन के जो प्रोडक्ट्स नए आ रहे हैं उसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा वेरी सून। एंड नॉट ओनली दैट, इफ पीपल हैव गॉट डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग नवरात्रि, ऑफ कोर्स पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट्स ड्यूरिंग नवरात्रि पीरियड, एंड दैट इज़ ऑल केटर्ड फॉर बाय जैमिन। और मैं आपको जब भी मौका मिलेगा मैं आपको समझाऊंगा। But we are now doing राग based songs of आशा भोसले जी। अब पहला गाना आपने सुना, that was 1992 में इन्होंने कुमार सानू जी के साथ राग आधारित गीत गाया, and beautifully sung by both of them, कल की आवाज, जो बी आर चोपड़ा के जो बेटे थे रवि चोपड़ा, उन्होंने डायरेक्ट की थी फिल्म, बी आर चोपड़ा ने प्रोड्यूस की थी ये फिल्म 1992 में। धर्मेंद्र जी उसमें पुलिस कमिश्नर बने थे, यस, राज बब्बर थे होम मिनिस्टर, एंड अमृता सिंह एंड प्रतिभा सिन्हा, दैट्स माला सिन्हा की बेटी, वो भी इस फिल्म में किरदार निभा रही थी। और संगीत दिया नदीम श्रवण ने, कितने 10 गाने और एक नज्म, और मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स वर सांग बाय आशा भोसले जी। आई थिंक कुमार सानू जी के साथ इन्होंने कितने 4-5 ड्यूएट्स इन्होंने गाए थे इस फिल्म में। और साधना सरगम अलका याग्निक ने एक ड्यूएट किया था, साधना सरगम और कुमार सानू जी ने एक ड्यूएट किया था, आशा भोसले जी ने एक सोलो भी गाया था।

0: across London. This is Ballybrambat on Like a Gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: Gold Afternoons with Ballybrambat. Ballybrambat is proudly sponsored by Gemin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Gemin Foods, the authentic taste of India.
2: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
4: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
4: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 8574 8410. साफो ट्रेवल. At all protected.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड।
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड।
2: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
4: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
5: SonaTours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off or lose the discount after. Call Sona Tours now on 0208 951 0111.
6: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English but louder.
7: Four beers please, garçon.
6: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is, and you're listening to it, because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
1: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
8: Book now on diwalistory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: अपने business को UK के largest Asian commercial radio network पर advertise करने के लिए call करें. Leica Radio Sales on 0207-132-1458 या email करें sales@leicamedia.co.uk.
10: Across London, this is Ballybrambat on Leica Gold.

0: कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझ हो कैसे समझाऊं।
1: कितना प्यारा गाना है फिल्म सूरज का, राग भैरवी।
2: कैसे समझाऊं,
0: बड़ी ना समझ हो कैसे समझाऊं।
1: फिल्म है फागुन। फागुन में एक्चुअली राग जो यूज किया गया है वो है राग पीलू, आशा भोसले जी सिंगिंग। तीर ये चुपके चलाया, चुपके चलाया।

Yes, that's right. Ek pardesi mera dil le gaya. Next hai Raag Kalavati. Film hai Chitralekha. Hope you enjoyed Raag-based songs of Asha Bhosle ji. Asha Bhosle aur Usha Mangeshkar ji ne ye geet saath mein gaya tha. Kahe Tarsaye, 1964 ki film Chitralekha. संगीत रोशन जी का और साहिर लुधियानवी की लिरिक्स. राग कलावती. एंड थैंक यू फॉर योर वंडरफुल मैसेजेस. आई अंडरस्टैंड यू रियली एंजॉयड दिस आवर.

किसी का बर्थडे है इसलिए मैं अनाउंस करता हूं। एक्चुअली जो गाना आपने सुना उसमें भी किसी का बर्थडे है, लेकिन मुझे ज्योति और गिरिशा दोनों ने मुझे बताया कि उनके ग्रैंडसन का बर्थडे है जिसका नाम है युवराज।

0: So युवराज, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड युवराज की फोटो भी मुझे भेजी, बहुत खूबसूरत फोटो है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द शाह फैमिली, ज्योति एंड गिरीश शाह। एंड मे ही हैव अ लॉन्ग हैप्पी हेल्थी लाइफ फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट लाइका गोल्ड। एंड यस, वी हैव अनदर स्पेशल बर्थडे हियर फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप बोर्न ऑन 10th ऑफ सितंबर 1972, सो ही इज 54 इयर्स यंग नाउ। और 54 इयर्स यंग में इन्होंने जो शुरुआत की और जैसे इन्होंने सीढ़ियां चढ़ी, और आज की तारीख में ही इज द टॉप मोस्ट नेम अमंगस्ट प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स विद अ ग्रेट टैलेंट। फिल्म डायरेक्टर बोलो, फिल्म प्रोड्यूसर बोलो, स्क्रीन राइटर बोलो, एक्टर बोलो, ही हैज बीन एक्टिव सिंस 1997 टिल प्रेजेंट। अब 1997 की बात अगर मैं करूं, तो ही मेड हिज नेम विद अ मेजर ब्रेक एज अ को राइटर इन राम गोपाल वर्मा'स क्राइम ड्रामा विच वॉज सत्या 1998। जी हाँ, 1998 में सत्या फिल्म बनी, जिसका गाना आपने अभी सुना, सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है, एन एब्सोल्यूट सुपर्ब फिल्म, जिसके अंदर राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट की, राम गोपाल वर्मा ने प्रोड्यूस की, भरत शाह वॉज ऑल्सो द प्रेजेंटर विद हिम। लेकिन उसमें से नाम बड़े बड़े निकले, मनोज बाजपाई गॉट अ बिग नेम आउट ऑफ दैट, उर्मिला मातोंडकर डिड सच अ ग्रैंड जॉब इन द एक्टिंग। इट वॉज रिलीज्ड ऑन 3rd of July 1998, दैट वॉज ऑन माई वेडिंग एनिवर्सरी एक्चुअली, एंड सो आई रिमेंबर द फिल्म सो सो वेल। यस, बहुत लंबी कास्ट थी इसमें, एंड वन ऑफ द ग्रेट नेम्स वॉज सौरभ शुक्ला। सौरभ शुक्ला not only was busy in acting in that particular film, lekin writing of the script usme bhi Saurabh Shukla was co-partner of Anurag Kashyap, who had written it, and widespread acclaim for that particular film. Aur uske baad inhone jo chadhan ki, then he started doing his own films as well, direction jo ki unhone Satya film ke baad. He went on to direct Black Friday, a film based on the a namesake book by Hussein Zaidi about the 1993 Bombay bombings. Ji haan, Black Friday 2004 ki film, and that was another, matlab wo film ko film certification ke liye उसको होल्ड किया गया 2 साल तक सेंसर बोर्ड ने, होल्ड की फिल्म और फिर इन्होंने रिलीज की वो फिल्म। सो यू कैन इमेजिन देव डी, यू नो एडेप्शन एडेप्टेशन ऑफ देवदास, वो 2009 में इन्होंने नेक्स्ट वेंचर किया था, गुलाल, गैंग्स ऑफ वसेपुर पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये सब फिल्में आप सुनते जाओ। एंड बाफ्टा अवार्ड्स, 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स इनको मिलते गए अवार्ड्स। द ड्रामा अगली इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, बॉम्बे टॉकीज 2013 की। आई मीन आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दिस पर्सनैलिटी। अब मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूं, इन्होंने कहां से शुरुआत की थी। मुंबई की एक छोटी सी जगह जो थी, जहाँ पे जी टीवी की ऑफिसेज होती थी, और वहाँ पे इन्होंने एक अवार्ड दिया जा रहा था, तो एट द जी शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट, उसमें अनुराग कश्यप को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो उन्होंने कहा कि 1993 में मैंने वहाँ से शुरुआत की थी। तो आप सुनिएगा उनकी आवाज़ क्या बोलते हैं।
1: When I came to the city and Z had recently started वर्ली में ग्लैक्सो के बगल में ऑफिस था और मैं वहां पे वहां के सीन से मेरा करियर का शुरुआत हुआ था. And you know, we filmmakers at that time had an opportunity. एक शो आता था गुब्बारे जहाँ पे हंसल मेहता, आशुतोष गोवारिकर, all of us filmmakers got to do short films. गुब्बारे में एक शो था जिसमें आशुतोष गोवारिकर ने एक्टिंग की थी, उसने बाद में उसको फिल्म बना के स्वदेश बनाई. गुब्बारे में एक एपिसोड था जो इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया था, जो बाद में आगे चल के हाईवे बना. आई एम सेइंग दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, लाइक यू नो वी वर लकी टू हैव दैट अपॉर्चुनिटी एंड वी कुड प्रेजेंट आवर वर्क इन द लेट 90s एंड वी बिकेम द काइंड ऑफ चेंज मेकर्स. नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट अ होल लॉट ऑफ अस, चेंज मेकर्स इन अर्ली 2000.
0: यस, चेंज मेकर्स इन द अर्ली 2000. यस, ये थे चेंज मेकर. And one of the change makers is none other than this great name, which is Anurag Kashyap. And we at Leica Gold wish him happy 54th birthday with long and happy healthy life.
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling will fetch you up to 128.45 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Need anything from Tesco? How about hundreds of the Tesco products you know and love, price matched to Aldi? Helping you bag more of our fresh essentials and cupboard staples. So, next time you pop in store or shop online with us, just look out for the Aldi Price Match logo. Tesco. Every little helps. Comparable product prices checked twice weekly pro rata, varies by store, selected products matched in express, excludes promotions, Northern Ireland and Wash. See tesco.com/Aldi Price Match.
2: This is Leica Gold.
4: Gold Afternoons.
5: Gold Afternoons.
4: Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
2: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
6: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
7: Weddings, celebrations, corporate events, ragas and sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak. World class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka phone milaye 0208839 0880 or visit ragasun.com. Location, design, management ya catering. Ragasun.
8: The wait is finally over.
9: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
8: Mirzapur is coming to the big screen.
10: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
8: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
11: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
8: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie in cinemas now.
12: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. Dusra koi nahi khulega.
13: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
14: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place.
14: Call the Danube Properties London office today on 02 03 963

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
3: Search is changing.
4: Customers aren't just using Google anymore.
3: They're asking AI.
4: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
3: One business, one recommendation.
4: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
3: Will your business be the answer?
4: Or the one that got left behind?
3: The future of search has already started.
4: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
3: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: खाखरा क्रंच भाखरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
6: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
5: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
7: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
8: 10 डेज साउथ अफ्रीका एवरी मंथ फ्रॉम नवंबर टू मार्च बुक बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ एंड गेट 200 ऑफ विजिट sonatours.co.uk और कॉल 0208-951-0111
9: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
10: आने दो अपने भैया को प्यारी सी एक दुल्हन चुन ले तब देखेंगे पीछे पीछे डोली होगी आगे आगे घोड़ी
11: ऐसा होगा
10: ऐसे ही होगा
11: ऐसा होगा वो कब

0: घोड़ा चढ़े घोड़ी, ऐसा होगा?
1: उल्टा होगा देव जी, आपसे अच्छी सूरत होगी, आपसे अच्छी बुद्धि।
0: हाँ, उस

0: गोल होता है, क्यों होता है? ये जो यूं है यूं ना हो तो यूं होता है।
1: यूं क्यों? कैसे?
0: ये जो यूं है यूं ना हो तो यूं होता है, क्यों होता है? गोल ना हो तो चौरस होगा, ऐसा होगा।
1: चौरस होगा, चौरस होगा चांद अगर तो फिर क्या होगा?

0: updates for London at Breakfast and Drive.
1: Need anything from Tesco? How about hundreds of the Tesco products you know and love, price matched to Aldi? Helping you bag more of our fresh essentials and cupboard staples. So, next time you pop in store or shop online with us, just look out for the Aldi Price Match logo. Tesco. Every little helps. Comparable product prices checked twice weekly pro rata, varies by store, selected products matched in express, excludes promotions, Northern Ireland and Wash. See tesco.com/Aldi Price Match.
2: Bally Brumbut on Gold Afternoons.
3: Like a gold.
4: मैं हूँ निशा नासिर, Like a Gold London और Greater Manchester में. मेरी और आपकी मुलाकात Monday to Friday शाम 7 बजे से 10 बजे रात Big Show में जारी रहती है. Big Show सुनना भूलिएगा मत.
5: Gem in Gold Afternoons with Bally Brumbut.
6: Bally Brumbut.
5: Gem in Foods, बिल्कुल घर जैसा स्वाद और घर जैसी ही बात. Available at Asian stores near you.
2: This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
7: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300

0: ताली तग धुम तग ताली तग जम तग धला अंग तग धुग तग तदिग नत तग नक तग झुम तग नक नक झुम तग नक नक झुम तग नक नक झम तरिता जग तरिता जन जाने को गुदारी दाबु तारी गेटे ताली झम तरिता जग तरिता जन जाने को गुदारी दाबु तारी गेटे झम तारी जग तारी जग नक तक तज झिन तज झिन तज झिन तज झम तारी जग तारी जन जाने को तज झिन तज झम तज झिन तक तग दंग दंग दंग कर दंग दंग दंग तग दंग दंग दंग
1: पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी जाला जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.
1: We're finally going home for the wedding.
2: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
1: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
2: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
1: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
2: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
1: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
3: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
4: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 02087677627.
5: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocenter.org. Assuming you want to get noticed.
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
7: Gold Drive with Sandy Shah. Oh yeah.
8: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.

0: ये है लाइका गोल्ड। This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: Maharaja Tours के साथ इस November explore कीजिए Singapore, Malaysia और Thailand, Sentosa Island, Batu Caves, Genting Highlands, Bangkok के floating markets और beautiful temples, फिर Pattaya और Coral Island का मजा. Fantastical Far East from सिर्फ £2,799 per person. Flights, 4-star hotels, Indian khana और amazing excursions, सब included. Visit maharajatours.co.uk or call 07956-154-846.
4: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
4: London, get ready for an unforgettable night.
6: Legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
4: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
6: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
4: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
6: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
4: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
7: Big Boss में इस बार मिलेगा प्रदान और एक्स्ट्रा जीवन दान तब हंस तू मेरी जान.
8: Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house exclusively on Jio Hotstar.
9: Royal Chai लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
10: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
9: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
10: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
9: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: Leica Radio Network, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
11: Gold Drive with Sandy Shah.
12: Oh yeah.
0: Leica Radio Network.

0: सज्जन चौखे हो गए ने, बथेरे हो गए ने, काफी हो गए ने, सज्जन चौखे हो गए ने, तां ही धोखे हो गए ने। किसरा आवां तेरे वल, रस्ते औखे हो गए ने। उसे तरह आओ जिस तरह अधिका क्यानी जी आए ने, जिस तरह लता जी आए हवा बन के। लीजिए, प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। गीतों में कुछ ना कुछ कॉमन है, बहुत सारे लोग पूछ चुके हैं, बहुत सारे लोग कामयाब, बहुत सारे लोग नाकामयाब।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today can get you up to 128.4 Indian rupees today. तो भूलिएगा नहीं exchange and branch online या फिर SBI Yono mobile app के जरिए. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products.

0: और बातें तो हम भी चाहते हैं कि आपकी हम सुने, हमारी आप सुने, और उसके साथ साथ ज्यादातर गीत जो हैं वो सुने और सुनवाए जा सके। मैं बताना भूल गई कि एक राजा और भी हैं। ये अलग बात कि वो गलत जवाब भिजवाने वालों के राजा हैं, और वो कोई और नहीं है, वो अपने वही मनु जी। मनु जी जवाब गलत है। मोहम्मद अयूब चौहान जी, आपका भी जवाब गलत है। अब ये लड़कियां सारी अड़ गई हैं, पहली बार सुना। हरप्रीत जी ने भी कहा, फिर संध्या जी ने कहा, फिर अमिता जी भी आ गई। अमिता जी आप तो रेगुलर सुनते हो, और संध्या जी आप भी हरप्रीत जी कभी काम की वजह से नहीं सुन पाती हैं, तो ये गीत बूहे बारियां तो अक्सर बेशतर मेरे प्रोग्राम में शामिल रहा है। चलिए, हो जाता है कभी मिस हो गया होगा। चलिए, अब नहीं कह सकते आप जब मैं दोबारा प्ले करूंगी कि पहली बार सुना है, फिर आप कहेंगे अनीसा जी ये दूसरी बार सुना है, अब गिनना नहीं है। ओके, मैं गिन रही हूँ ये नाम। फवाद जी, राजा यावर चौधरी, फरीद अहमद जी, दीनी जी, उमर जी, ऑल द वे फ्रॉम दुबई। उमर जी, ये क्या डीपी लगा रखी है भाई, बहुत प्यारी है। कह रहे हैं दूसरे नंबर से हेलो। अच्छा, कितने फोन रखे हुए आपने, आपका जवाब सही है। अमित पटेल जी, ओम प्रकाश लाल जी, हरप्रीत जी, वेल डन। शगुफ्ता जी, मंजीत संगर जी, प्रीति जी बेल्जियम से, आबिद जी, सैम शहजाद जी, मकबूल जी, मकबूल हो गए भी आज आप सही जवाब देकर। उल्लास जी टोरंटो से, सलमा जी, आफ्ताब गिल जी है से, तोची जी, रीटा जी, मिसेस के किचन में बिजी नहीं है आज क्या, सही जवाब। अजिंक्या जी, आई होप कि कल आपने अपनी फरमाइश का गीत सुन लिया होगा, रुत है मिलन की, तो रसीद जरा भिजवा दीजिएगा। ताहिर जी, आपका भी जवाब सही है।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Like our gold. Feel good classics with Anisa Nasir.

0: हो भी सकता है उसे दूरी का एहसास ना हो, मैं जिसे पास समझती हूँ मेरे पास ना हो। वो जो बिछड़ा है तो कुछ सोच के बिछड़ा होगा, शायद उसको भी मोहब्बत से कोई आस ना हो। लीजिए भी, हमें तो बड़ी आस है। लो जी, हो गया कन्फ्यूजन। और कन्फ्यूजन ये हुआ कि मुझे आप विश्वनाथ के गीत के बारे में कह रहे हैं, हवा से हल्की हूँ आज। कमाल है, इतना कमाल का गाना आपने पहले कभी नहीं सुना, वो भी बहुत बार शामिल हुआ है, लेकिन चलिए ठीक है। आपने भी यही कहा संध्या जी कि मैं हवा से हल्की की बात कर रही हूँ, और हरप्रीत जी भी कह रही हैं कि मैं उस गीत के बारे में कह रही हूँ, बूहे बारियाँ के लिए नहीं। चले, माफ़ किया, आप भी क्या याद करेंगी। लीजिए, आपको एक ज़रूरी पैगाम जो है वो मैं पहुंचा दूं, आपको बता दूं। लाइका रेडियो, लाइका गोल्ड टीम अप कर रहे हैं एक दफ़ा फिर से। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ इवेंट्स होते रहते हैं, एक स्पेशल प्रमोशनल इवेंट है सिद्धायु एट क्वालिटी फूड्स हेज एंड हौसलों में। ज्वाइन कीजिएगा रूबी रजा, काजल और सैंडिशा को दिस सैटरडे यानी कि 12 सितंबर, और इंजॉय कीजिएगा फ्री हेयर मसाज सेशन विद सिद्धायु हेयर ऑयल एंड सिद्धायु शैम्पू। एक्सप्लोर कीजिए सिद्धायु टूथपेस्ट एंड एक्सपीरियंस द नेचुरल गुडनेस ऑफ सिद्धायु आयुर्वेदा। सिद्धायु फ्रॉम द हाउस ऑफ बैद्यनाथ विद ओवर 100 years ऑफ ट्रस्टेड आयुर्वेदिक लेगेसी। जाइएगा और खूब मजे कीजिएगा, और फिर जाकर जब आप सैंडी को देखेंगी ना, तो फिर आपको यकीन आ जाएगा कि हम गलत नहीं हंस रहे थे। अगर हम हंस रहे थे कि तो किसी वजह से हंस रहे थे, वो आपको देखने पर ही पता चलेगा। अभी मैं कुछ नहीं कहूँगी, बिल्कुल भी नहीं।
1: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: हो जी अंजुम जी, क्या कह रही हैं आप? कह रही हैं कि मेरी आवाज़ लीक हो रही है। अब कार्डिफ में मेरी आवाज़ रुक रुक के क्यों आ रही है भाई? ये कार्डिफ वालों ने कुछ किया होगा। अंजुम जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जल्दी से वापस आ जाओ जहाँ पर आपको मेरी आवाज़ पूरी फ्लो में जो है सुनाई पड़े। ये लीक होती हुई आवाज़ नहीं अच्छी लगती। सईदा जी, आपका जवाब सही है। फरजाना जी आपका, संध्या भावसर जी, अंसर महमूद जी, रानी जी सलाव से, गुरसरनजीत जी और रजनीश जी, महेंद्र पटेल जी, सोहबत खान जी, आज तो आप भी आ गए मैदान में। बिल्कुल सही है।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Need anything from Tesco? How about winning the best night in ever with one of 50 tech bundles worth £10,000? Spend £25 in-store or online with your club card to qualify. Tesco. Every little helps. UK and Isle of Man 18 plus only. Club card required. Spend £25 on qualifying purchases in-store or online. Max one entry per day. T's and C's restrictions and exclusions apply.
1: Anisa Nasir. Live across Greater London with The Big Show. Like a
3: gold. Travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन Travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट Travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट Travelhubworld.com।
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
5: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
5: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
9: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
10: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
9: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKER on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
10: Exclusive media partners LIKER Radio. Sponsored by Sari Pleeta, Shana Foods, Vegan and Regrow.

0: है लाइका गोल्ड. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: One British pound aaj aapko dila sakta 374.8 Pakistani rupees, 88.4 Afghan Afghani, 129.2 Indian rupees, 166.8 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: The gold is currently trading at £103.76 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: आपस की बात है, ये वक्त की कमी भी मेरा मुंह बंद करने में नाकाम रहेगी. मैं जल्दी से नाम मेंशन कर दूं, तारिक राहिल जी. दो ही घड़ियां मुझ पे गुजरी हैं कठिन जिंदगी में, दो ही घड़ियां मुझ पे गुजरी हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद, और एक आपके जवाब भिजवाने से पहले और एक आपके जवाब भिजवाने के बाद, क्योंकि जवाब गलत है. नीलेश जी, दिलीप सरोज जी, दिनेश पोपट जी, हनीफ जी टोरंटो से, कैसे हैं आप, खैरियत से? जवाब बिल्कुल सही है. इरफान जी, जहीर खान जी, ऑल द वे फ्रॉम कराची, कहते हैं वो जो मैं दिया जलाकर छत पर आपका प्रोग्राम सुनता था ना छुट्टियों के दौरान, बकरे ने टांग मार के, हाथ मार के, उन बकरे के हाथ होते हैं, हाथ मार के वो तोड़ दिया. चलें, सुनना ही होता है, कौन सा आपने देखना होता है, नया दिया ले आए. जवाब सही है. नौशीन खान जी, वीना जी, वेल डन.
0: बिगेस्ट इंडियन एंड पाकिस्तानी क्लासिक्स विद अनीसा नासिर.
1: लीजिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत, गीता दत्त जी की आवाज में, फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस 1955 की फिल्म. आई होप सैंडी इज नॉट लिसनिंग. उसने कहना वो विंटेज तू ही कर ले, तू ही कर ले, भड़ास निकाल ले वहां.

0: हवा कॉमन रहा आज गीतों में, और मिसेस के ना सिर्फ आपका नाम लिया बल्कि ये भी पूछा कि आज किचन में मसरूफियत कम है क्या, तो आपने मिस कर दिया। कोई बात नहीं, हवा कॉमन रहा गीतों में, बूझने वालों का भी शुक्रिया और ना बूझने वालों का भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लीजिए आगे बढ़ेंगे हम एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते और सुनवाते हुए। बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं, और अगर किसी का नाम इस घंटे में शामिल ना हुआ हो तो उसके लिए माजरत, प्रोग्राम के अगले घंटे में मेंशन करने की पूरी कोशिश आएगी। बहुत ही प्यारा सा गीत है, सुनते रहिए।
1: दिस इज अनीसा नासिर विद द बिग शो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.

और अगर आप भी रेडियो से दूर हैं तो करीब आ जाइए, वरना मिस कर जाएंगे ये बहुत प्यारे प्यारे से गीत। दर्द के दायमी रिश्तों से लिपट जाते हैं, अक्सर होते हैं तो शीशों से लिपट जाते हैं। हाय वो लोग जिन्हें हमने भुला रखा है, याद आते हैं तो सांसों से लिपट जाते हैं। बेहद शुक्रिया आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का। वजह जी, आप तो मतलब खेल गए हमारे साथ। हम तो समझते थे सिर्फ ये लाइन हमें ही आप लिखते हैं कि वेरी नाइस शू एंड सॉन्ग्स ऑलवेज। मैंने देखा ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर, अरे अरे भैया क्या कर रहे हो।

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Tum bin jaun kahan, kahin bhi mat jaiyega please. Mera ho ja, mujhe ayyar mukammal kar de, ya mujhe chhod de, inkaar mukammal kar de. अपने दीदार के जलवों में घिरा रहने दे, दूर जाना है तो दीवार मुकम्मल कर दे.
0: This is like a gold. Holiday breaks are brought to you by South Old Travel.
2: अच्छा जी, आपको बता देते हैं हम हॉलीडेज के बारे में भी. और साउथ ओल्ड ट्रेवल इज नोन फॉर इट्स कम्पेटिटिव हॉलीडे डील्स इन दुबई. कॉन्टेक्ट कीजिएगा आज ही साउथ ओल्ड ट्रेवल को ऑन 0208574 8410. साउथ ओल्ड ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड.
0: Holiday breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk. This is Anisa Nasir on Like a Gold, Greater London.

0: रखना था तेरी मस्त निगाही के भरम को, महफिल में बिन पिए भी मुझे डोलना पड़ा।
1: ये है लाइका गोल्ड
0: और ये है अनीसा नासिर, जो आपको बता रही है कि कैच लाइव एंड एक्सक्लूसिव क्रिकेट एक्शन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान ऑन जियो हॉटस्टार। 3 1-day इंटरनेशनल्स फ्रॉम संडे 13 सितंबर अंटिल थर्सडे 17 सितंबर फ्रॉम 2:50 PM। डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू द जियो हॉटस्टार ऐप नाउ। जियो हॉटस्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप। चलो भाई, टाइम नहीं है।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4-7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: मैं कदे बंद करें लाख जमाने वाले, अब भी हैं शहर में आंखों से पिलाने वाले।
1: Like extra podcast update.
0: और आपको पॉडकास्ट के बारे में भी बताने वाले। और इस दफा का लाइका एक्स्ट्रा न्यू एपिसोड वाला जो पॉडकास्ट है उसका टाइटल है मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट रेजिंग डेट्स, होस्टेड बाय खुश। और खुश स्पीक्स टू मिनाल सांबरे, फाउंडर ऑफ समेरिया ग्लोबल फाइनेंस, टू ब्रेक डाउन मिथ्स अराउंड बिजनेस डेट्स। दे एक्सप्लोर व्हाई बिजनेसेस शुड प्लान फंडिंग बिफोर कैश फ्लो बिकम्स अ प्रॉब्लम, रोल ऑफ AI इन फाइनेंशियल डिसीजंस, and why human judgment still remains essential, obviously. तो आपको बता दूं कि तमाम major streaming platforms पर ये platform पर जो जितने भी हैं लाइट, वहां पर आपको Like Extra podcast देखने को मिल सकता है।
1: Like Extra is here. This is Anisa Nasir with a big show.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
3: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट TravelHubWorld.com।
4: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
5: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
7: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
9: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
10: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
11: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Like Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
12: अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे अपने बड़े की, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, जमाना हमारी इज्जत करे। और जिसने अपने गुरु की माँ बाप की दुआ दे दी उसको आगे जाने से को रोक सकते। बड़े पंडितों उस्तादों का कहना है कि संगीत अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुँचाता है।
1: Like Extra is here. Search for our podcast, Like Extra, on all major streaming platforms. Feel Good Classics with Anisa Nasir.

0: फिल्म चेतना के लिए 1970 की फिल्म मुकेश जी आवाज देने पर इसरार कर रहे हैं, जबकि शायर का कहना है, तुझे पुकार के पहले भी मान टूटा था, तुझे पुकार के पहले भी मान टूटा था, सो अब के दिल ही ना माना कि फिर सदा देते। शगुफ्तगी है हमारे मिजाज में, वरना पलट के इतनी सुनाते उसे रुला देते।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta 129.2 Indian rupees, 88.3 Afghan Afghani, 374.7 Pakistani rupees, 166.7 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £103.76 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: और आइए अब जरा बात करते हैं उल्टे पुल्टे की। फवाद जी, आप लास्ट आवर में राजा थे ना, राजा तो आप अभी भी हैं, लेकिन गलत जवाब भिजवाने वालों के देखो कैसे तख्त से तख्ता हो जाता है, पता भी नहीं चलता इंसान को। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्राइंग। रिजवान शाह जी, आप हैं राजा ऑफ द आवर। सबसे पहले आपने सही जवाब भिजवाया, फिर गीता हर्षित जोशी जी ने, उल्लास जी ने, सलमा जी ने, अजिंक्या जी ने, रीटा जी ने और सईदा जी ने। वेल डन। सुनवा रही हूँ कुछ ही देर में, बहुत ही प्यारा गीत है।
1: This is Leica.
4: पंजाबी तड़का विद अनीसा।
0: और आजकल जनाब शौकत अली के साहबजादे इमरान शौकत अली यहाँ लंदन में हैं। बहुत दिल चाह रहा है उनसे मुलाकात हो, बिल्कुल अपने डैड ही की तरह गाते हैं। जीते रहिए।

0: Anisa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 p.m. Like a gold. This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
0: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
0: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
1: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
0: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleeta, Shana Foods, Begin and Regrow.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410। साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
4: Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on LIKA Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at lykamedia.co.uk. Anissa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 p.m.
5: Punjabi Tadka with... Punjabi Tadka with Anissa.

0: अपने दर्द अपने दुख को खुशी बनाकर गाना, और वो भी ऐसे, ये सिर्फ और सिर्फ रफ़ी जी का ही कमाल है। वो जो लोग थे मेरे हम सफ़र, मेरी ज़ात का जो निखार थे, वो जो लोग थे मेरे हम सफ़र, मेरी ज़ात का जो निखार थे, वो जो रोज़ और शब मेरी चाह थे, वो जो रोज़ और शब मेरी चाह थे, वो जो लम्हा भर का वक़ार थे, ना वो लोग हैं मेरे पास अब, ना निखार है मेरी ज़ात में, ना वो रोज़ और शब की चाह है, ना वो लम्हा भर का वक़ार है, बस ज़िंदगी है बेनाम से, कभी सुबह सी कभी शाम से। अमीन मोहम्मद जी, बेहद शुक्रिया आपके प्यारे से मैसेज के लिए। सुनते रहिए, सुनवाते रहिए, और डेफिनेटली आपकी पसंद को जहन में रखते हुए ही मैं गीतों को जो है वो चुनती हूँ। आपको पसंद आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना जी। थैंक यू वेरी मच। ये गीत आपके भी नाम करते हैं, बल्कि जिस जिसको भी अच्छा लगा उसके नाम, और किसको अच्छा नहीं लगेगा ये गीत, आपका अपना लाइका गो द फर्स्ट रेट्रो ऑफ यूके लंदन आपकी खिदमत में पेश आ गया।
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.

0: डूबना है कि पार जाना है, डूबना है कि पार जाना है, आओ आंखों से मशवरा कर लें। दो बेहद खूबसूरत चॉइसेस, एक दीनी जी की और ये राजेंद्र जी की। बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत और भी हैं जो आप ही ने चुने हैं, मिलजुल कर सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। वैसे हेलो हाय का सिलसिला जारी रहना चाहिए, इतने भी लेजी मत हों कि एक मैसेज ना भिजवा सकें, मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास ना दिला सकें। हम मौजूद रहते हैं आपके लिए 24 घंटे सातों दिन।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today can get you up to 128.4 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online ya phir SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: Aur मन्ना डे जी का गाया हुआ गीत रोज ही चुनते हुए मुझे बहुत मुश्किलटी का सामना होता है, समझ में नहीं आता कौन सा सुनवाऊं और कौन सा नहीं सुनवाऊं, लेकिन अब जो गीत मैंने क्यों कर रखा है, मुझे उम्मीद है कि आपकी पसंद के मैार पर डेफिनेटली खरा उतरने वाला है। ये गीत मैंने लिया है फिल्म बावर्ची से, 1972 की फिल्म, और टू बी वेरी ऑनेस्ट कम कम सुना और सुनवाया जाता है, मगर मुझे भरोसा है कि आप बहुत पसंद फरमाएंगे। चलिए सुनते हैं।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: It's happened again, Jackie. I only went in to replace my mascara, but I just had to try a lip stain and a face cream and that hair oil from Social. And once I'm here, I'll just...
3: There's nothing like finding your new favourite and your other new favourite and your other other new favourite, which is why Boots curates the best of beauty, from your favourite brands to the latest trends. With expert guidance on hand, you can be sure to find what works for you. And with save up to half price on Feel Good Beauty, you can really afford to...
4: Give it some Boots.
5: Offer ends 20th of October 2026, subject to availability.
1: Anissa Nasir, live across Greater London with The Big Show.
6: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
7: For the first time in

0: wait is finally over.
1: अब सही सुर लगा रहे मुमताज.
0: Mirzapur is coming to the big screen.
2: गद्दी ना तो विरासत से मिलती ना सियासत से.
0: Power, revenge और Mirzapur की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल.
3: अबे कालीन भैया है वो किंग ऑफ Mirzapur.
0: पंकज त्रिपाठी एस कालीन भैया, अली फजल एस गुड्डू पंडित और Mirzapur के आइकॉनिक कैरेक्टर्स अब सिनेमा में और भी बिगर. Mirzapur द मूवी इन सिनेमाज नाउ.
2: Mirzapur में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
4: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
5: Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
6: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
5: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
6: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
5: For more information, contact 07585 801801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
8: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
7: ये तो बताओ, कोई पता चला?
8: गुरु गुरु,
9: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
8: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है.
9: सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
7: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र
9: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
11: टू बुक कॉल 0208-514-5400. Book online at Eventbrite.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno LeicaGold.com pe.
13: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: हिजरत गुरेज अदम तवज्जो थकन सुकूत दूरी और गुरेज मीन अवॉइड करना अदम तवज्जो तवज्जो ना देना थकन सुकूत खामोशी हिजर गुरेज अदम तवज्जो थकन सुकूत गम मेरे एतमाद को कितने कुतर गए दिन को किसी की याद की दीमक ने खा लिया आंखों के ख्वाब शब के सितारे कुतर गए What a beautiful song. And you all agreed with me. Yes, no doubt. बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के नाम करती हूँ मन्ना डे जी का गाया हुआ और अब बहुत सारे जो हैं लोग अभी भी फरमाइशें भिजवा रहे हैं तो आई एम सॉरी रोज़ मैं एक दो लोगों की फरमाइशें ही पूरी नहीं कर सकती आप दूसरों को भी मौका देने का सोचा करें ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड और इससे पहले कि हम अगले गीत की जानिब बढ़ें हमारी रानू जी का मैसेज आया है डेनवर से कोलोराडो से कैसी हैं रानी जी लॉन्ग टाइम बहुत अच्छा लगा आज आपका मैसेज देखकर बेहद शुक्रिया और हरप्रीत जी मैं आपका दुख ये तो नहीं कहूँगी कि समझ सकती हूँ लेकिन जान सकती हूँ एक माँ हूँ ना आपकी कैफियत का बखूबी अंदाज़ा कर सकती हूँ अपना ख्याल रखिए राइट एक मैसेज आप सभी के नाम करते हैं बिग बॉस इज बैक 20th सीजन है दोस्तों और इससे हमेशा की तरह सलमान खान होस्ट कर रहे हैं एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर दिखाया जाता है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार स्ट्रीम कर रहा है एवरी एपिसोड अलॉन्ग विद लाइव 24/7 फीट फ्रॉम द बिग बॉस 20 के घर से तो जियो हॉटस्टार जो है अब अवेलेबल है एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा देखने की बड़े वैसे मज़े की बातें हो रही हैं और टास्क तो जब भी होते हैं तो बस भाई टास्क का दूसरा नाम है लड़ाई झगड़ा फसाद गालम गलोच कल की एपिसोड तो मतलब सुनाई ही नहीं पड़ी क्योंकि ब्लेप ब्लेप ब्लेप इतनी गालियां निकालते हैं यार
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley
2: soft and tender like grandma's warm hug Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives visit dairyvalley.net

0: अंसर जी को अपनी यूनिवर्सिटी के दिन याद आ रहे हैं ये गीत सुनने के बाद। अब भला कोई पूछे अंसर जी से आप यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते थे या गाने सुनने जाते थे, सच्ची बताइएगा। मुकेश जी की पसंद, क्या बात है, सॉरी रमेश जी की पसंद।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और भी रमेश जी का बेहद शुक्रिया, जैसे गीत शुरू हुआ उन्होंने रसीद भी भिजवा दी, और वो बहुत जरूरी होती है, वो इसलिए कि मतलब मुझे एहसास रहता है कि आपने सुन ली अपनी फरमाइश। गुरमीत सिंह जी, आपके प्यारे प्यारे अल्फाज के लिए बेहद शुक्रिया, थैंक यू। और ये गीत उन सभी के नाम जिनको बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा, खास तौर पर तारिक राहिल जी भी, उफ सॉन्ग है ना तारिक साहब,
1: ये है Like a Gold।
0: और लीजिए Like a Gold पर आपको एक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें, उदित नारायण और आदित्य नारायण लाइव, जी हाँ, 90s बॉलीवुड लेजेंड उदित नारायण परफॉर्म करेंगे अपने बेटे आदित्य नारायण के साथ एट ओवो अरीना वेम्बली ऑन संडे 20th December। टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स, जाहिर है Like a रेडियो नेटवर्क। तो आगे बढ़े बढ़ जाए प्लीज।
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Like a Gold रेडियो, Like a रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड Like a रेडियो मिडलैंड्स पर।
1: दिस इज अनीसा नासिर विद द बिग शो। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road Wembley। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas.
6: Taxi!
5: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
7: Two businesses.
8: Same town.
7: Same service.
8: One appears on page one of Google.
7: The other doesn't.
8: Guess which one gets the customer?
7: The truth is brutal.
8: The first page of Google gets the business.
7: Everyone else gets what's left.
8: So here's the real question.
7: When your customers search for what you sell, do they find you?
8: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
7: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
10: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
11: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.
12: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: अब तो शायद मेरे सुनने वालों को भी पता होगा कि इस गीत की फरमाइश निम्मी ने ही की होगी। डेफिनेटली निम्मी, कभी मिलो मुझे, मैंने ना आपको चाय में घोल के ये गीत जो है पिला देना किसी दिन। व्हाट अ ब्यूटीफुल नंबर, आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। और अभी हमने मुकेश शाह जी के नाम गीत किया और मुकेश जी के नाम गीत किया और एक मुकेश शाह जी और हैं जिनका मैसेज आया कि मेरा नाम भी आया और वैसे ये गीत मुझे भी बहुत पसंद है। चलिए दोनों मुकेश, बल्कि हर मुकेश, हर रमेश जी के नाम वो गीत गया। जिसको भी अच्छा लगे भाई उसे अपने ही नाम समझिए। लीजिए जल्दी से ये कुछ काम निपटाएं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta 374.7 Pakistani rupees, 129.2 Indian rupees, 88.3 Afghani, 166.7 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LIKA Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £103.76 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: और कुलबीर सिंह जी, मुकेश जी का गाया वो गीत आपके भी नाम।
2: ये है लाइका गोल्ड, 10:35 AM
3: फ्रॉम लॉलीवुड विद लव विद अनीसा।

0: वाह अमीन मोहम्मद जी, क्या पसंद है। कहते मेरा मोस्ट फेवरेट गीत है। वो कहते हैं वो मुझको छोड़ के खुश है तो शिकायत कैसी, वो मुझे छोड़ के खुश है तो शिकायत कैसी, अब अगर उन्हें खुश भी ना देखें तो मोहब्बत कैसी। इसी चमन में रहो भाई, हम तो इसी चमन में रहेंगे और कल फिर गुल खिलाने के लिए आ जाएंगे। गुल जी आपने बहुत प्यारी शायरी भिजवाई थी, मैंने पूरी कोशिश की सम हाउ शामिल कर पाऊँ, वो वैसे ऑलरेडी मैं शामिल कर चुकी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर कल कोशिश रहेगी शामिल करने की। मेरे जाने के बाद गोल नाइट का चुना हुआ म्यूज़िक सुनिएगा, इन्जॉय कीजिएगा और सुबह ब्रेकफास्ट के लिए हाजिर हो जाएंगी काजल जी। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा सारा दिन, जब तक मैं नहीं आ जाती शाम को, मेरा भी साथ निभाने के लिए तैयार रहिएगा। आखिरी दो फरमाइशी गीत तो बहुत बहुत बहुत प्यारे हैं। तारिक राहिल जी पूछ रहे हैं आपको कैसे पता कि वो वहाँ यूनिवर्सिटी में गाने सुनने जाते होंगे। अरे यादें बनाने तो गए ना, समझा करें तारिक साहब, आप तो खुद उसी सिचुएशन का शिकार हैं। नहीं शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जाऊं रब सोने दे हवाले।
1: This is Anisa Nasir with the big show. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
0: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
3: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 0203-773-633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर Travel Mantra.
4: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Southall Travel. Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
4: Southall Travel can take you there.
7: Southall Travel, at all protected.
8: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
9: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
8: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
9: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
8: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
11: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Leica Gold.
12: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 AM Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।
1: न झटका जुल्फ से।

0: is like a gold.
1: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place. 11,
2: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
4: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410। साफो ट्रेवल Auto protected.
6: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
7: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
8: You know how fans shout at football matches?
9: Oh, wake up!
8: That's because sound is the most effective way to tell the

0: गोल्ड। ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
0: One performer.
2: के सामने प्रोसन से कह दे क्या पहनी है तुमने साड़ी भाई या खिलाड़ियों के खिलाड़ी?
3: Countless personalities.
4: जिंदगी बर्बाद हो गया।
5: A whole universe of entertainment.
6: नन्ना फंक्शन रखा हुआ है।
3: Sunil Grover live UK tour 2026.
5: 29th October Ovo Arena Wembley London. 31st October Mattioli Arena Leicester.
3: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
5: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
5: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
9: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
10: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
11: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.

0: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लायका गोल्ड पर।
1: हो जा दो दिलों की मोहब्बत के नतीजे।

मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करूं ले तेरे पाँव परो, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू, थाकी गयो फरीप न थी समझ तो बेशरम। हाँ अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दूंगा।

0: bringing to you the best classics all night. Like a Gold on 10:35 AM.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected. Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
2: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
3: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.
4: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
5: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।